0: तब स्तुकनु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महल्ला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

इस जलंदे जगत नूं तारन लई गुरमत संगीत परंपरा दी दात बख्शी, रहमता भरी इस परंपरा नूं समूह गुरु साहबान ने सदियां तों सिखी जीवन दे अनिखड़ अंग वजों स्थापित कीता है। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी दे अखुट खजाने विच वख-वख रागां, गायन शैलियां अते संगीत छंदां दी अदूती दात प्रदान कीती है। आप जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे पातशाही दसवीं हर गुरसिख हिरदे विच वसी हुई इलाही बाणी है। श्री दसम ग्रंथ साहिब विच इस बाणी नूं वख-वख रागां विच अंकित कीता गया है। गुर किरपा अते समूह संगतां दे सहयोग द्वारा संत बाबा सुच्चा सिंह जी ज्वद्दी टकसाल दी अगवाई विच विस्मादनाद संस्था गुरमत संगीत दे शुद्ध ते मौलिक स्वरूप नूं प्रचारन दी सेवा विच लीन है। आओ सरवण करिए राग निर्णायक कमेटी द्वारा प्रवाणित स्वरूपां अनुसार शब्द कीर्तन शब्द हजारे पातशाही दसवीं।

गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे हैं और ये धर्म दा मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण कीता आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलदे ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलदे ने रहे लिव तार ना तावत है भटकना मुक जांदी है लिव जुड़ जांदी है जीवन दा आनंद लैंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

का सरहन सरसा नदी तो बिछड़ के माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादे मुगल सरकार दी कैद विच साका सरहन।

जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, गुण गावत ते पुत्र समै सच्चे के गुणगान, गुण गावत तेरी पुत्र समैल बिन सजाए हो मैं दुख है, जन्म कर्म

जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटे पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूनिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम हर मेलो स्वामी

हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जगजी

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

लख सिगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलाएन दूत जम किसे ना देनी पेत।

पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना हो, मन बेदिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा

भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बना। पटा ने साहब की महान वडियाई की। साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह मन नू संबोधन करते ने, जप मन मेरे तू एको नाम। इत्थे मन की अवस्था भी बयान की। कहंदे ने तरह तरह के बड़े सुंदर वस्त्र भी पहने होने इंसान ने, चंगे पाउडर भी लगाए होने इस शरीर नू, पर जे मन मैला है तां साहब कहंदे ने सब कुछ ही मैला।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जन दासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पै कहिए,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ पस

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा। किन्ही ग्रह तजवन खंड पाया किन्ही मोन।

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माने ने माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम ते लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर दिन दूजा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना सो प्रभु जी पास। सब कुछ कीता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान।

अपनी कृपा करें। क्या कमल नल खड़ा दे किस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

ते मेरे मन दे विच एक आस लगी रहिंदी है, हे मालिक दिन ते रात दे विच 24,000 श्वास हन, ते श्वास दे विच एक एक श्वास दे विच 4 वारी भी तेरा नाम जपां ते तां भी ओ पूरा नहीं हो सकता। इस कारण करके मैं तेरे चरणा विच बेनती करदा हाँ कि मैनू लख जेवा दे दे, मैं तेरे गुण गांदा गांदा तेरे दर्शन कर सकां। गुरु अर्जन सच्चे पातशाह फरमान करते हैं।